नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से यह है आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा एफएम रेनबो चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 दे जेठ महीने दी 3 तारीख है। ते तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 24 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

तो सारणीय ट्यूनिंग के 102.7 एफएम रेनबो दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वी ते मैं थोड़ी आज दो सराइल प्रोग्राम चल रहा है जान दियो ना।

जी दोस्तों, दोस्तों ने ट्यून किया था 102.7 एफएम रेनबो दिनाल नाल ही 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। ते प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। 8:07 इस वेले हो चुके ने। ते जिंदगी जिंदगी ते की ही गल करिए, जिंदगी ने किन्ना किन्ना किन्ना सानू सिखाउंदी है। बिल्कुल, पहला रवांदी भी है फिर हसाउंदी भी है। फिर अजकल जिस तरह

जी कॉकटेल फिल्म तो एक गाना एंजॉय किया तो आइकॉनिक सॉन्ग तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें एंड यू नो व्हाट कॉकटेल टू भी रिसेंटली रिलीज हुई है एंड लाइक आई जस्ट लव्ड दिस मूवी ऑफ कोर्स मूवी का कॉन्सेप्ट चाहे थोड़ा जहा कह सकते हैं आप कि काफ़ी एडवांस्ड कह सकते हैं आप पर बहुत ही सिंपल है एंड दैट इज़ कि जो प्यार है ना वो हमेशा रहता है अट्रैक्शन जो है वो घट वध हो सकती है एंड डिस्ट्रैक्शन भी घट वध हो सकती है अटैचमेंट कटवर्ड हो सकती है बट लव इज फॉर एवर एंड जो प्यार है ना लाइक शाहिद कपूर दा क्लाइमेक्स जो डायलॉग सीगा कि जो प्यार है ना वो एक ओ बहुत ही पुरानी कसी हुई हल्की जी छेदना वाली टी शर्ट वांगू हुंदा है तो चाहे जितनी मर्जी पुरानी होवे चाहे छेद नहीं होदे विच पर सुकून उसी टी शर्ट विच मिलता है सो दैट मीन्स कि प्यार जो है ना इट्स सुकून ओके एंड जिथे सुकून है दैट मीन्स कि उत्थे जिथे सानू सुकून मिलता है दैट मीन्स कि येस दैट इज लव एंड बहुत प्यारा डायलॉग सीगा लाइक लास्ट जो एक पूरा एक कह सकते हैं कि मोनोलॉग सीगा शाहिद कपूर दा इट वॉज वेरी वेल रिटन जो विचो कहता है कि मतलब जो प्यार है मतलब वो जिस भी जिन्हों भी चुनता है मैं पूरा यू नो खराब नहीं करांगी तो हाडा जो कह सकते हैं आप एक्साइटमेंट क्लाइमेक्स देखन दी पर और जिन्हों भी चूज करता है एंड मतलब वो कितना ब्यूटीफुली कहता है कि यू नो तुम मेरी उस अलमारी जैसी हो बिखरी हुई अलमारी जैसी जिसमें जो मम्मी कहती है कि क्यों इतना ऐसा हाल बना रखा है अलमारी का पर मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है मुझे वहीं से मिलती है सो इसलिए सुकून मुझे तुमसे ही मिलता है सो वाओ शाहिद कपूर ने जो क्लाइमेक्स दा जो परफॉर्मेंस किया ना मतलब दिल लुट के ले गए वंस अगेन शाहिद कपूर यू नो द एक्टिंग फिलहाल जी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द शो सुनते चले जाओ तुसी प्रोग्राम अपना तुहाडा गीत बहार मेरी यानी आरजे गरिमा दे नाल एंड एफएम रेनबो दे नेक्स्ट सॉन्ग स्टे ट्यून्ड

फ्रॉम इश्क विश्क टू कॉकटेल टू, मतलब क्या जर्नी सी ना शाहिद कपूर दी। आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना गीत बहार एंड जर्नी वैसे होर भी अगे है, होर पता नहीं केड़िया केड़िया फिल्मा दे रही ने शाहिद कपूर ने एंड अपनी एक्टिंग दे नाल किन्ना सरप्राइज करना है सारिया नू, राइट। फिलहाल गीत बहार प्रोग्राम दे विच अगला गाना मैं प्ले करांगी सोनू निगम एंड अलका याग्निक दा। एंड वैसे अलका याग्निक जी तो याद है, उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड मिलिया रीसेंटली एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हों का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इंडियन म्यूजिक है उसके विच। एंड द थिंग इज़ कि जदों अलका याग्निक अवार्ड रिसीव करने लिए गई सी पद्म भूषण अवार्ड, तो सोशल मीडिया से लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया कि अलका याग्निक जी ने इन्ना यू नो प्रतिष्ठित अवार्ड मिल रहा है तो इन्नी खुश क्यों नहीं लग रही है, इन्नी लेम क्यों लग रहे हैं। एंड बाद विच हुने रीसेंटली अलका याग्निक ने डिस्कलोज किया कि उन्हें हैल्थ सही नहीं सी, वो कुछ सीरियस हैल्थ इशू तो सफर करते पे ने, करके उन्होंने उन्होंने बॉडी में इन्नी एनर्जी नहीं सी, स्टिल वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से इस करके रिसीव करने के लिए गए। सो जज नहीं करना चाहिए इदा किसी ने भी, हर कोई खुश होंदा है अवार्ड लेंदे, जरूरी नहीं है कि कोई स्माइल नहीं कर पा रहा तो वो ईगो है कमांड है समथिंग लाइक दैट। ओके सो एनीवेज अलका याग्निक जी एंड सोनू निगम की आवाज़ में अगला गाना जो है आप इंजॉय कर लेने फ्रॉम फिल्म धड़कन। तुसी प्रोग्राम गीत बहार विच बने रहो विद मी RJ गरिमा, बिकॉज थोड़ी दिल की धड़कन जी है वही कह रही है कि नैक्सट गाना प्ले किया जाए। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो।

खास पसंद नहीं सीगा, बट सरोज खान वॉज सरोज खान एंड उत्तरी माधुरी दीक्षित बींग माधुरी दीक्षित उन्होंने क्या इंप्लीमेंटेशन किया। तू शायर है इस लाइन के सिग्नेचर स्टेप नो, इस गाने के सिग्नेचर स्टेप नो। गीत बहार प्रोग्राम में चार जे गरिमा है थोड़े नाल आकाशवाणी एफ एम रेनबो थी एंड इस प्रोग्राम द लास्ट ट्रैक प्ले करने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे ब्यूटीफुल अमेजिंग गाने जुड़े ने आप इंजॉय किए ने, हौले हौले फ्लैशबैक तक गए हैं। सो इट वॉज अमेजिंग जर्नी ऑफ प्रोग्राम गीत बहार टूडे। पर अगले प्रोग्राम में भी तो मिलना है ना थानू, इस करके प्रोग्राम में तो वाइंड अप करना पैना है विद दिस अमेजिंग सॉन्ग। सुनते चले जाओ 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो, आरजे गरिमा है थोड़े नाल। नेक्स्ट प्रोग्राम्स विच वी स्टे ट्यून्ड।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम शुरू हो चुका है पंजाबी तड़का आरजे गरिमा दे नाल ते साडे पहले कॉलर दे नाल आपां करदे आं फिर गलबात। हैलो,
1: कोशिश करो कि कोई आपसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि जिंदगी भर उस रिश्ते की डोर ना टूटे।
0: जी बहुत ही खूब, और तारीफ आपकी।
1: हाँ जी ग्रीमा जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल।
1: बीपीओ कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो मिंटू चंदेल जी।
0: मिंटू जी, की हाल चाल तुहाडा?
1: हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया
0: बहुत वधिया, बहुत खूब तुसी लाइन्स जिहड़ियां ने अर्ज कीतियां ने प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच जी, बहुत वधिया लग्या
1: जी। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी।
0: ओके जी, सो केड़ा गाना सुनोगे?
1: हाँ जी ग्रीमा जी, तुसी गाना सुना दियो बब्बू मान जी दा, बहुत ही अरसे बाद गाना प्ले होएगा रेडियो ते, दिल ता पागल है।
0: दिल ता पागल है, एक्चुअली थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच दे चलते है गाना ता नहीं आ पा रहा, पर बब्बू मान दा गाना मेरे दिल विच तेरा घर होवे ओ वाला आप प्ले कर सकते हैं हुने।
1: चलो कोई नहीं, इतना दे भी बहुत अच्छा गाना है
0: जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिंटू जी रेडियो ते कॉल करन दे लई।

0: काफ़ी कुछ कह गया है गाना। आकाशवाणी एफ एम रेनबो के प्रोग्राम चल रहे जी, थोड़ा अपना पंजाबी तड़का आर जे गरिमा के नाल। हैलो
1: गरिमा मैम, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कूका तलवंडी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो जी।
0: सोनू जी, की हाल चाल है? ਔਰ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਟੂ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ, ਆਰ ਜੇ ਗਰਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम में रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का एंड मिलते हैं एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद उसके बाद पंजाबी तड़का विच कॉल्स दा गल्ला बात दा ते गाने दा सिलसिला जारी रहेगा स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा तुहाडा अपना पंजाबी तड़का एंड अगले गाने दा तड़का आपां लगावांगे कौन लगाएगा हेलो
1: हां जी मैडम जी सत श्री अकाल जी
0: सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे हो
1: मैं जी चरणजीत सिंह चन्ना आनंद नगर नियर मकसूदा जलंधर तो बोल रहा
0: जी चरणजीत जी बहुत चिरा बाद गलबात हो रही है साडे नाल तां
1: चालू हो गया ਕੁੜੀਆਂ ਤਰਿੰਜਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼

वेल जी, बड़ा सोना मुंह प्यार कर दी छनवे, सो बहुत ही प्यारा जहा गाना। सुरिंदर शर्मा दा ऑल टाइम सुपर ट्रैक, राइट? आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल।

वेल जी, बड़ा सोना मुंह प्यार कर दी छनवे, सो बहुत ही प्यारा जो गाना। सुरिंदर शर्मा का ऑल टाइम सुपर हिट ट्रैक, राइट। आकाशवाणी एफ एम रेनबो प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल। सो जी, जिन्नी जिस तरीके नाल धुप पै रही है ना, सो ट्रैवल भी जो लोग करते पे ने, पहाड़ों पर भी जा रहे हैं, उन्होंने भी सनबर्न हो रहा है, बिकॉज पहाड़ों पर की होंगे कि थोड़ा सनलाइट को बहुत चंगे तरीके पैंती है स्किन पर। सो ऑफकोर्स उत्थे भी जाके जो एक यू नो सनबर्न है स्किन पर हो जाता है, तो ईवन का इधर अपने शहर भी रेंदे हुए उदों भी सनबर्न हो जाता है। सो एक रामबाण कह सकते हैं आप, दैट इज़ मुल्तानी मिट्टी, यस, जो कि साढ़े फेस का सनबर्न जो है उन्होंने भी यू नो छूमंतर कर देगी। दो या तीन बार भी लगावे जिनी टैनिंग हो जाती है ना, सारी की सारी निकल जाती है। सो आई जस्ट लव दिस। सो बाकी लवली लेडीज़ को बहुत वधिया तरीके पता है, दे आर रियली स्मार्ट कि ये गुलाब जल मिक्स करना है, आप शहद मिक्स करना है, किस तरीके आप अपने यू नो पपाया का जो चूरा हों मिक्स करना है, की करना है, यह तो सबनों पता है, बाखूबी पता है, राइट। सो जी एनीवेज, जो एक देसी चीज़ होंगी है ना, जिमें देखो विरासतन चली आ रही है, बहुत ही साड़ी परदादियाँ उन्हां दी भी मम्मिया, मतलब परदादियाँ दी मम्मिया भी मुल्तानी मिट्टी जड़िया ने लगादियाँ होनगियाँ, एंड इस करके तो जो देसी चीज़ा है ना वो मैजिक ही बिल्कुल अलग होंगे। ताइयों तो विआह शादियों तो पहला जो बटना है तैयार किया जाता है, सारिया घरेलू चीज़ा पा के दुल्हन प्रॉपरली ग्लो लिया के लिए उन्होंने ग्लैमअप करन के लिए। सो वो तो मतलब वही तो कोई रीस ही नहीं हैगी, है ना। सो इस तरीके ब्यूटी के नाल नाल खाण पान के भी जो सारिया देसी चीज़ा तो कोई रीस नहीं हैगी। यू नो वट, रीसेंटली मेरे कजन ने क्या कि यू नो उन्हें पूरी कैलकुलेशंस लगाइया कि जदों तो यह जड़ियाँ फूड ऑर्डरिंग एप्स स्टार्ट हुई ने उदों तो लैके हूँ तक किन्ना उदा टोटल खर्चा जोड़ा है वो यू नो होया होएगा, पूरा का पूरा जोड़ा खर्चा है किन्ना होया होएगा। एंड ही एस्टिमेटेड कि ऑलमोस्ट इन्ने साल तो मतलब ऑलमोस्ट 9 या 10 साल के अगले ने 10 लाख प्लस दियाँ जिहड़ियाँ फूड आइटम्स ने, मतलब जो भी सब्जी चौमिन जो भी चीज़ा ने वो मंगाइया ने ऑर्डर की हुई ने 10 लाख दियाँ। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड, मैं क्या ओ माई गॉड, मतलब इन्ने साल तू 10 लाख का समान जोड़ा तू ऑर्डर किया है तो घर खाधा है, मतलब घर का बनया हुआ फूड नू डिनाई करके तू 10 लाख रुपीज का यह बाहर का खाना ऑर्डर करके खाधा है। एंड ही सैड कि भई दीदी ये तो नॉर्मल है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये तो बहुत ही घट है, मेरा फ्रेंड है 25 लाख का पूरा तो पूरा कैलकुलेशन निकलिया सी। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, क्यों आप सिंपल होममेड फूड जो साढ़े देसी खाने है उन्होंने साइडलाइन करके सब कुछ खा रहे हैं, स्पेशली जंक फूड एंड ऑल। एंड उस बाद फिर आप कहने कि भी अजकल के जो बच्चे ने बहुत ज़्यादा यू नो जंक फूड खा रहे हैं, बिकॉज की है ना कि उन्होंने घर बैठे टेस्टी फूड मिल रहा है, एक क्लिक से मिल रहा है तो करके। सो उस चीज़ के सारी सारी सिनेरियो पेरेंटिंग जो है बहुत वड्डा रोल अदा करती है कि किन्ना को तुसी यू नो बिकॉज फिर मम्मिया कहदियां ने हर एक जी मदरस ने उन्हों का तो यही कहना होंगे कि बई बच्चे सुनते ही नहीं है, उन्होंने हाथ में फोन है, ऑर्डर कर लेंगे ने, जो आप बनाया हों समान वो फिर रह ही जाता है, मतलब एक टाइम का तो उन्होंने बाहर खाना ही खाना है। सो बेसिकली आदत बिगड़ रही ने, पर जो पेरेंट्स ने फिर थोड़ा जहा उन्होंने भी हो जाता है कि बई आप कि कह लवेंगे, आप ज़्यादा रोका टोंगा टोकोंगे तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे साढ़े तो। सो पेरेंट्स भी अपनी जगह बिल्कुल सही ने, इस करके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बदलते समय के नाल नाल सानू अपने बच्चों किस तरीके वधिया डाइट दवानी है, किस तरीके जंक फूड नू कंट्रोल करना है, वो भी आप थोड़ा जा होर अपग्रेड हो जाइए बिल्कुल साड़ी जी, ताकि पेरेंटिंग जी ना वो प्रो मैक्स हो जाए। किस तरीके सब कुछ कर सकते हैं वो आप गल करेंगे इस गाने तो बाद। आकाशवाणी एफ एम रेनबो प्रोग्राम चल रहा है, तो अपना होम स्वीट होम विद मी आर जे गरिमा।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

इतना सारा सामान लेके जाने की क्या जरूरत है, वो तो एक गुलाब के फूल से भी मान जाएंगे. आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल. पर जे ओ फूडी होन जर उन्हें खाना पीना पसंद होवे तां फिर वैसे भी दिल तक दा दरवाजा जो है ओ तां बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड तो होके जाता है. बीट मैन और द वूमेन, मतलब अजकल तो इदा है कि हसबेंड जी टेस्टी जो खाना जे बना के खिला देन वाइफ नू तां फिर वाइफ सोचती है कि वाह वाह वाह, मेरे सारे व्रत जड़े ने, मेरी सारी तपस्या का फल मैनू मिल गया. सो एनीवेज, फिलहाल अज आप गल करांगे वार्डरोब दे बारे. देखो जी, वार्डरोब यानी कि घर दे विच जो भी जगह ओ अलमीरा या वार्डरोब जिहदे विच आप बहुत अपने कपड़े वगैरह रखने होंगे ने. सो द थिंग इज कि हमेशा ही ना इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि साडा जिहड़ा कमरा है उहदी स्पेस उहदे स्ट्रक्चर दे अकॉर्डिंगली ही आप अपना जिहड़ा वार्डरोब है वह चूज़ करिए. देखो हर वार्डरोब इको जिहा नहीं हुंदा है, सही वार्डरोब जिहड़ा है वह चुनन दे लई उहदी जिहड़ी टाइप है उहदा जिहड़ा यूजेज है, मतलब उहदे विच जो यू नो मटीरियल भी लगाया गया उहदा भी ध्यान रखना हुंदा है. दरवाजे का जिहड़ा डिज़ाइन है वह किहो जिहा है, स्टोरेज की जिहड़ी अरेंजमेंट हैगा स्टोरेज का वह भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. सो सब तो पहला तो देखो डोर जो है वह मकैनिज़म दे जो भी उहदी मकैनिकल तरीके जो बनया होया उहनू पहले थोड़ा जिहा समझना चाहिए फिर चूज़ करना चाहिए. सो वार्डरोब का जिहड़ा दरवाजा है वह साडे कमरे की जगह होर भी ज़्यादा जो मतलब कमरे की जी जिनी भी स्पेस हैगी अकॉर्डिंगली चुनना बहुत जरूरी है. देखो जे कमरे का शेप है वो अनुसार आप सही ऑप्शन नहीं चूज़ करते तो उही वार्डरोब ना रोज़ सानू बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकता है तो बहुत ज़्यादा सानू फिर लगेगा कि वार्डरोब जो है उन्होंने हटाई दी है कमरे तो. सो देखो अलग अलग तरीके के वार्डरोब्स होंगे जिमें कि हिंज डोर वार्डरोब जो है, देखो छोटे कमरे के हिंज डोर वार्डरोब जो है ना वो सही नहीं होंदा बिकॉज़ उहदे जिहड़े दरवाजे ने खोलन दे लई ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस की लोड़ हुंदी है, तो जेकर कमरे के पहले ही बहुत ज़्यादा फर्नीचर है तो वह जिहड़ा उही दरवाजा ना हिंज डोर उहदा वार्डरोब दा वह बहुत बड़ी हर्डल बन सकता है. सो वड्डे कमरियां दे लई सॉफ्ट क्लोज जो हिंज वार्डरोब जिहड़े ने वह सही रहिंदे ने, टिकाऊ रहिंदे ने, भरोसेमंद रहिंदे ने, तो इहदा यूजेज भी बहुत ही आसानी नाल

ओके जी, शुरू हो गई लव स्टोरी। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल। सो जी, हर एक दी लव स्टोरी हुंदी है मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम दे विच। मतलब मेरा कहना था कि जो म्यूजिक है उहदे नाल साडी जिहड़ी लव स्टोरी है ना, ओह होर वी ज़्यादा परवान चढ़ जाती है जो आकाशवाणी ते इन्ने प्यारे प्यारे जिहड़े गाने ने ओह प्ले हुंदे ने। तां वैसे फिलहाल इह जिहड़ा गाना है इह बॉलीवुड ट्रैक है 1986 दी फिल्म आखिरी रास्ता तों, एंड आखिरी रास्ता मोहम्मद अजीज एंड एस जानकी की आवाज़ के गाना तो इंजॉय किया। म्यूजिक जो है दिता से इस गाने का लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के नाल, एंड लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब। एस ऑफकोर्स इस फिल्म के अमिताभ बच्चन, जया प्रदा एंड श्रीदेवी सिगे, एंड अमिताभ बच्चन डबल रोल दे विच, यू नो, फादर सन सेम सेम। सो बहुत सारी फिल्मों जो अमिताभ बच्चन की आदि सी जिस उन्होंने डबल रोल हों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का लैवल जो भी डबल हो जाता है फिल्म के रिलीज़ तो पहला ही। फिलहाल अगला गाना तुम इंजॉय करो, आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़ विद मी आरजे गरिमा।

मेरा नाम तो आरजे गरिमा है एंड टाइम हो चुका है प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज तो साइन ऑफ करन दा यस 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते आरजे गरिमा साइनिंग ऑफ बिकॉज बहुत सी गल्ला मैं कर ली आज एंड फिलहाल आरजे सुरभी इज देयर टू टेक ओवर द स्टूडियो सो कहना मैं ही चाह रही हूँ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अपना रखो बहुत सारा ख्याल अपने आप में करो बहुत सारा प्यार हंसते वाजते रहो ते सुनते रहो एफएम रेनबो बाय बाय

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताब जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और

उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो श्रोताओ, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है जी। चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी
audio@cieet.nic.in

0: इन पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red, and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red, and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए

0: अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है।
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूं कुलपति महोदय?
4: आइए आइए।

0: फादर बुल के मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
0: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
0: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
0: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,

0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां सेहत से जुड़ी हर बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आपसे जुड़ते हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय, और आप रहते हैं हमारे साथ उसी कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम लोग अच्छे से जान पाए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे वर्किंग आवर्स, अनियमित खान पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इन सब का असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है और खासकर हमारे वजन पर। और वजन जब बढ़ जाता है, या यूं कहें कि बढ़ती जो ये मोटापे की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हेल्थ समस्या बनता जा रहा है। तो ये जो सिर्फ देखने के लिए जब हम बात करते हैं कि ओबीस है या कोई मोटा है, तो वो लुक्स पर ही सिर्फ इफेक्ट नहीं डालता है, वो कभी कभी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। और इन सब के लिए जरूरी होता है वजन कम करना, पर कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो

0: हर तरह से डाइट प्लान करने के बाद, जिम जाने के बाद, योग करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं, तो उनके लिए एक और तरीका है, उसी तरीके पर आज हम बात करेंगे, और वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी और ये किस तरह का विकल्प है, और क्या इसे हम ये माने कि ये वजन कम करने का आसान तरीका है, या इसके भी कुछ गंभीर या रिस्की आउटकम्स हो सकते हैं? ये सारी बातें आज हमने सोचा हम इस कार्यक्रम में करें, और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूं, क्योंकि आज हम इन सवालों पर बिल्कुल सही, साफ, अनबायस तरीके से जानकारी चाहते हैं हमारे अपने दोनों एक्सपर्ट से। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे दोनों रेडियो डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, एसोसिएट डीन हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर निखिल, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, आप को चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार जी, और आप सभी का स्वागत है, और हम इस ओबेसिटी जैसे मैम ने बताया उसके बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएंगे।
0: जी बहुत धन्यवाद आप दोनों स्पेशलिस्ट को कि आप लोग आए हैं और समय निकाला है आपने, और इस कार्यक्रम में आप आज एक घंटे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कीजिए कि ये किस तरह की सर्जरी होती है, और इसके क्योंकि मैंने टॉपिक इसमें यही रखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरीज प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जहां तक हमें पता है इस सर्जरी या हर सर्जरी के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान या रिस्क भी हो सकते हैं, तो हम आज उन दोनों पर जानकारी चाहेंगे आप दोनों से। और हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़ गए होंगे, आपको हमारे साथ रहना है इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं को यहां हमारे रेडियो डॉक्टर्स के सामने रखना है जैसे आप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, पहले डॉक्टर मुकुंद आपसे पूछूंगे कि ये जो सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज दिस?
2: बेरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली, जब ये सर्जरी शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, तब ये सर्जरी सिर्फ वेट लॉस सर्जरी के हिसाब से शुरू हुई थी। तब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वजन वाले और वजन की वजह से ही परेशान थे, बट पिछले 1 दशक में हमने क्या देखा है कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये मेटाबॉलिक सर्जरी बन गई है। जैसा आपने अभी बताया कि ये खाली एक वजन के लिए नहीं है, बट ये वजन के साथ साथ बीमारियां जो अपने साथ लाती है उनको ठीक करने का एक मेजर तरीका है, जो मरीज अपने एक्सरसाइज या डाइट या और किसी तरीके से अपना वजन नहीं कर पाते। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये होती तो 1958-59 में शुरू हुई थी। अच्छा। बट तब ओपन सर्जरीज होती थी, तो ओपन सर्जरीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति वाला इरा शुरू हुआ है, इसने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है, और अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि अगर हम देखें तो रोज, अगर मान के चले हम अगर दिल्ली शहर में भी माने तो रोज करीब 100 मरीज इसके ऑपरेट होते होंगे। अच्छा। तो ये इतना कॉमन सर्जरी हो गई
0: जी, पर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें जाननी जरूरी हैं, अभी तक लोग उतनी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, और इसीलिए रेडियो डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकुंद ने हमें कहा कि बहुत सारी और कारण होते हैं जो वेट कम होना चाहिए, जिसमें बीमारियां जो हो जाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर निखिल की अगर कोई ओबीस है, ओवरवेट है, सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी कैटेगराइज कैसे किया जाता है, जैसे बीएमआई जिसकी बात लोग जानते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं अगर मोटापा हो तो?
1: देखिए, जैसा डॉक्टर मुकुंद सर ने बताया, और अगर हम बात करें आज से 40-50 साल पहले, खास तौर पे अपने देश की बात करें, तो जब भी हम किसी मोटे आदमी से मिलते थे तो एक इंप्रेशन माइंड में आता था भी खाते पीते घर का है आदमी या औरत, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। और सिर्फ मरीज वो इंसान कैसा लगता है, सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, मोटापा अपने आप में पूरा पैकेज है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, या मैं ये कहूँगा कि शायद ही शरीर का ऐसा कोई सिस्टम होगा या ऐसा कोई ऑर्गेन होगा जिसकी बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप ये इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक 60 किलो के आदमी के ऊपर अगर 120 किलो का वजन उसको उठाना पड़ जाए तो उसके शरीर के सारे हिस्से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है, उसके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके जोड़ जल्दी घिस रहे हैं, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे वो आदमी

0: अफेक्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। और अगर आपने वो मोटापे पे काबू पा ले, जिसमें सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं, खाने पीने की सलाह, एक्सरसाइज, अपना डाइट रेगुलेट करके, लेकिन अगर कोई मरीज ये सब करके भी अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पा पा रहा है, तो अब आज की डेट में बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी अवेलेबल है, जिसकी मदद लेकर वो दोबारा से फिट हो सकता है और इन सब बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकता है। अब मोटापा कहते किसको है? मोटापे के लिए बेसिकली जो शरीर का वजन कितना होना चाहिए, ये या मोटापे में है या नॉर्मल इंसान है, डिपेंड करता है उसका वजन और उसकी हाइट पे। जैसा कि ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का आइडियल वेट उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। तो BMI, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो निकाला जाता है वजन किलोग्राम में, और इसको अगर डिवाइड किया जाए हाइट मीटर में, उसका स्क्वायर, तो वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, तो इससे BMI निकलता है। BMI ऑन एन एवरेज कहते हैं 25 से 28 के बीच में रहे तो वो एक आइडल रहता है। अगर हम मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करें कि उसके लिए कब हमको जाना चाहिए, इंडिया अपने देश की बात करें सेटिंग में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का BMI 32.5 32.5 से ऊपर है, साथ में उसको कोई कोमॉर्बिडिटी या जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनकी हमने बात करी अभी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कुछ और, तो इस तरह के मरीज में हम मेटाबॉलिक सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं।
1: इस बारे में और मैं डिटेल में जानना चाहूंगी आप दोनों से कि किसकी सर्जरी की जा सकती है, किसको एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं इस तरह की सर्जरी कराऊं। पर यहां पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। डॉक्टर निखिल की पसंद का ये गीत मैंने निकाला है और वो सुनकर हम वापस आएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, आप हमें मैसेज करिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं बैरियाटिक सर्जरी, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। हमारे दो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात डॉक्टर निखिल ने भी बोली थी कि कुछ इतना बीएमआई से ऊपर होगा, जैसे 32 से ऊपर या कुछ तो किया जाता है। आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया होता है कि बीएमआई, या कुछ और भी देखा जाता है, या कौन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे करानी चाहिए कि नहीं?
1: देखिए, जब हम छोटे बच्चों में आजकल हम देखते हैं स्कूल में भी ओबेसिटी या वजन ज़्यादा हो रहा है, और करीब हम जब स्कूल का सर्वे, हमने भी आज से 3-4 साल पहले सारे स्कूल्स का दिल्ली का मिलकर के कुछ एसोसिएशंस के साथ किया था, तो हमने देखा था कि 25-30% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी। जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, क्लास 1 ओबेसिटी है कि हमारा बीएमआई जो है वो 23 से 28 हो। क्लास 2 ओबेसिटी है कि 23 से 28 से लेकर के 32.5 तक हो। और जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ गए 32.5 वाले, उनको किसी तरीके की मदद चाहिए,
0: उन्हें चाहिए, चाहे
1: उन्हें
0: वो किसी
1: मदद
0: तरह से
1: चाहिए,
0: भी
1: वो
0: हो।
1: किसी भी तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब उनको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक बीएमआई एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो, है ना, कि वेस्ट और हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए 0.8 से ऊपर हो, फीमेल्स के लिए 0.9 से ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाए तो। जैसे मैंने बताया कि यंग बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम परसेंटाइल देखते हैं, बीएमआई नहीं देखते, उसमें हम परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल वेट गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी ओबेसिटी क्लास क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तरीका है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा।
0: तो जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, ओबीस है, जिसको आप कह रहे हैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तो क्या आप उसको अपने सामने वो सारे ऑप्शंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, कि आप लोग सर्जरी पार्ट ही डील करते हैं?
1: नहीं, ओबेसिटी जो है वो एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमारा मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है वहाँ, जहाँ हम ओबेसिटी एज ए होल को होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास, बीइंग अ सर्जन, मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगा, तो उसको हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज वेन वी कम इन टू पिक्चर, देन सर्जन कम इन टू पिक्चर।
0: यस, तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी
0: जी,
2: नमस्ते
0: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
0: जी जी बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है, 23 साल की बिटिया का वजन 35 किलो वजन है, उनका वजन कम होता है और खाना खाती है तो पेट में दर्द की शिकायत है, अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन आया हाथों में।
3: अच्छा योगराज जी, जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया का वजन कम हो रहा है और कुछ खाने पे पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि वजन कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह पेट का टीबी भी हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी बिटिया को लेकर जो है नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन हो या सर्जन हो या पेट के डॉक्टर हो, उनसे मिलके जो ज़रूरी जांचें हैं जिसमें हो सकता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, दूरबीन की जांच या सीटी स्कैन वगैरह हो, जिससे कि बीमारी पकड़ में आए और उसका इलाज शुरू हो सके।
2: जैसे करवाया था,
3: हाँ जी,
2: तो उसमें इन्फेक्शन आया और 4-5 जांच और भी करवाई, जैसे टीबी की है या 6-7 जांच हमने करवाई, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आई।
3: देखिए अब ये तो सारी रिपोर्टें देख के ही कुछ बता पाएंगे, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पेट का टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जांच में पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, और कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही हमको दवाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह यह है टीबी हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत कॉमन भी है, तो अगर उसके लक्षण उस तरफ जा रहे हैं तो टीबी की दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फैसला जो डॉक्टर उनको देख रहा है, उनका इलाज कर रहा है, वो ही ले पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि सारी जांचों की रिपोर्ट लेकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जिनसे भी आप

0: का इलाज करा रहे हैं और वो ही आपकी इसमें मदद कर पाएंगे।
1: चलिए धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ कॉल पर हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी जी नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी जी राजेंद्र जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
2: जी, 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75-80 केजी के आसपास मेरा वेट है, वजन है। तो पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी दा से ही नमस्कार,
1: जी
2: और
1: नमस्कार जी।
2: दोनों डॉक्टर साहिबान को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को या पेशेंट को अगर थायराइड है या शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका वेट और मतलब मोटापा और वजन घटेगा या बढ़ेगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई शख्स ऐसे मैंने देखे लाइफ में, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, ना वो मोटे होते ना उनका वजन बढ़ता, वो बेचारे क्या करें? तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि उनके हिप्स पे और मतलब कुल्लों पे, टोंट पे और ये चेस्ट पे और गर्दन पे और गालों पे बहुत चर्बी होती है, वो लोग बेचारे क्या करें ये मतलब चर्बी और वजन घटाने के लिए? और चौथा सवाल मेरा ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वजन और मोटापा घटाने के लिए? और पांचवा, जो आप ये सर्जरी बता रहे हैं पैराबैंडिक सर्जरी, तो इसमें अगर सर्जरी होती है तो इसमें मतलब इसमें टाइम कितना लगता है? खून खराबा ज्यादा तो नहीं होता? तो प्लीज जरा बताए, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा कार्यक्रम अपने प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है राजेंद्र जी। बहुत सारी चीजें हैं, हम आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन हाँ, आपके जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब उनके जवाब दे रहे हैं। सर बताएं, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि थायराइड शुगर जो जिनको होता है उनका वजन पर क्या इफेक्ट होता है इसका?
3: देखिए राजन जी, जो आपका थायराइड और शुगर है ना, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमारा थायराइड डिस्टर्ब्ड है या शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा वजन बढ़ता भी है। तो थायराइड की बीमारियां दोनों ही तरीके की होती हैं, जिसमें थायराइड लेवल्स बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपका वजन कम होता है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो गए हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। सिमिलरली ब्लड शुगर का है कि शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी से वजन बढ़ता है या वजन कम होता है। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है जब, या कुछ शुगर की मेडिसिन भी होती हैं जो हमारे वजन को कम करती हैं। तो ये जब तक हम जाँचें नहीं कराएंगे या कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स को कि आपका थायराइड की वजह से वजन ज़्यादा या कम है या शुगर की जैसे ज्यादा कम है।
1: और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है ये भी उन्होंने पूछा था, चर्बी बहुत होती है उसका, तो बहुत सारी चीजें तो हम बात करते ही जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, लेकिन सर्जरी पे जो उन्होंने बात की जो हमारे इस कार्यक्रम से संबंध रखती है, कि क्या इतना कितना समय लगता है इस सर्जरी में? और मैं इसमें और जोड़ूंगी कि इसमें जब सर्जरी के बाद, डॉक्टर निखिल आप बताएं कि इसको नॉर्मल रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है पेशेंट को?
0: देखिए, अगर हम सर्जरी के टाइम की बात करें तो ये मेटाबॉलिक सर्जरी की 3-4 वैरायटीज हैं और हर सर्जरी का अपना अलग अलग टाइम है। फिर भी अगर मोटी मोटी बात करें तो 45 मिनट से लेकर आप कह सकते हैं करीब 2 घंटे इसमें लग सकते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले का भी टाइम होता है, मरीज़ की पोजीशनिंग वगैरह। और इस तरह के मरीज अपने वजन की वजह से सर्जरी के लिए भी थोड़े से हाई रिस्क केसेस होते हैं। इनका हार्ट, इनका लंग, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज लेवल पे है। तो उसको सर्जरी तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी, यानी कि बेहोशी के डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम, लेकिन अपने आप में मैं कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा। ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से, यानी कि लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक तरीके से होते हैं और कोई खून या ब्लड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऑपरेशन हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद ही, या कभी तो उससे भी पहले, मतलब 12 घंटे के बाद मरीज को सिप्स यानी कि लिक्विड शुरू किए जाते हैं और 1 से 2 दिन के बाद मरीज के अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। 6-8 घंटे में ही मरीज खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है और एक बार जब 24 घंटे के बाद मरीज लिक्विड्स ले पाता है और चल फिर पाता है तभी उसके अस्पताल से छुट्टी की जाती है। ये सब फायदे हैं लैप्रोस्कोपी के। और सर्जिकल टेक्निक्स में जितनी एडवांसमेंट आई है उस सब के सारे फायदे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज को दिए जाते हैं।
1: जी।
0: एक इनका सवाल बड़ा अच्छा था जो मैं चाहूंगा उसका जवाब देना। ये एक्चुअली में ये ऐसा देखा गया है कि एक फर्क है हमारे देश के मोटे मरीजों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटे मरीजों में। हमारे देश में इसको ट्रंकल ओबेसिटी हम कहते हैं कि पेट निकला हुआ है, कंधे और बाजू पतले पतले होंगे लेकिन सारा का सारा वजन जो है वो, जिसको पहले जमाने में टोन कहते थे या बेली, लेकिन एशियन पॉपुलेशन में, और सबसे ज्यादा खराब यही है जो ट्रंकल ओबेसिटी है। अगर आप बाहर के मोटे मरीज देखें वो 200-250 किलो के भी होंगे, लेकिन वो लंबा आदमी है, कंधे चौड़े हैं।

0: उसके, और उसके बाजू है, उसकी थाइज है। यहाँ पे हम लोगों में, हिंदुस्तानियों में या एशियन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी है जो ज्यादा खराब है, ये शुगर ज्यादा कॉज करती है। तो इसीलिए बाहर के मरीजों में मोटापा की सर्जरी की जाती है वजन कम करने के लिए ज्यादा, लेकिन हमारे देश में मोटापे के साथ बीमारियां बहुत जुड़ी हुई हैं इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से।
1: तो शायद ये हमारे लिए और उतना उपयोगी है,
0: हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए ये जो अभी हम बीएमआई की बात कर रहे थे, बीएमआई की सारी कट ऑफ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से 2.5 कम है, मतलब बाहर के मरीज में इंडिकेशन 35 से ऊपर है बीएमआई, लेकिन एशियन पेशेंट्स में यही बीएमआई की कट ऑफ 32.5 है, 32.5।
1: तो वो रीजन बिकॉज ऑफ
0: इन्हीं सब की वजह से
1: जी। तो आपने बताया कि जिस तरह से सर्जरी होती है वो तो एक आम सर्जरी की तरह होता है, उसमें वापसी भी लोगों की नॉर्मल लाइफ में वैसे ही है, लेकिन इस सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, और एक टाइप्स की भी बात कर रहे थे आप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, डॉक्टर मुकुंद आप भी बताएं कि ये कितनी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं इसमें बेरियाट्रिक में।
2: जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये बेसिकली मेनली दो तरीके की सर्जरीज होती हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव जिसमें हम खाने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं खाली।
1: अच्छा।
2: दूसरी होती है कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन और माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहले उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन है कि जिसमें हमारे खाने की कैपेसिटी तो कम हुई बट हमारा कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन बायपास हो गया। जैसे हम शहरों में बायपास रोड देखते हैं, वो बड़ी रोड है बट हमने ट्रैफिक को बायपास कर दिया, इसमें हम जो इंटेस्टाइन्स को बायपास करते हैं तो जो खाने का मिक्सिंग है विद द बॉडी जूसेस, मेनली जब खाना हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे जूसेस बन रहे हैं वो जूसेस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उन जूसों से जब तक वो मिक्स नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। तो जब हमने बायपास कर दिया तो उसका वो जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में डबल तरीके से इफेक्ट करती है, ये रेस्ट्रिक्टिव और माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरीज।
1: लेकिन आपने बोला कि हम उसको बाईपास कर देते हैं, तो क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाएगी अगर किसी की ये सर्जरी हुई है तो?
2: ये जो जिन मरीजों में हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज कहते हैं, उनमें अमूनन हम देखते हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादातर पब्लिक वेजिटेरियन होती है, तो वेजिटेरियंस में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उनकी डाइट में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन्स कम होते हैं। तो हम जैसे पहले पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में भी, जब हम सोशल अपना पढ़ते थे, कि प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन होता है, तो हम सिर्फ कैलरी माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं। तो कई बार इन मरीजों में हमें शुरू के कुछ टाइम, जब तक मरीज रिकवर कर रहा होता है, अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहा होता है, उस जर्नी के दौरान हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं।
1: ओके, तो सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं, और बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर निखिल बताएं कि किस तरह का खान पान उन्हें रखना होता है या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, क्या तब भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या टेस्ट कराना पड़ता है?
0: देखिए, बिल्कुल सही जैसे अभी बात बताई कि बाईपास सर्जरी के बाद खास तौर पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की मरीज को जरूरत पड़ सकती है और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है, टाइम टू टाइम उसके टेस्ट जरूर कराए जाते हैं, और एक बार जब एडिक्वेट वेट लॉस हो जाता है या जो हमारा टारगेट वेट है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद किए जा सकते हैं। अगर पेशेंट ने अपना वेट लॉस अचीव कर लिया है, एक आइडल वेट कर लिया है, उसका लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन ये सब हो गई है, तो इन सप्लीमेंट्स को बंद किया जा सकता है पहली बार। लेकिन तब भी मैं जरूर कहूंगा कुछ कुछ मरीजों को इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर दिन में एक गोली लेनी भी पड़े तो। लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो उसके उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि वही मरीज जो ऑपरेशन के पहले दिन में ब्लड प्रेशर की और शुगर की 5-6-7 गोलियां खा रहा था, वो सब बंद हो जाती हैं, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट अटैक का खतरा कम हो गया, एस्थमा में
1: ये दवाइयां इमीडिएट बंद हो जाती हैं उसके बाद,
0: बहुत जल्दी।
1: अच्छा,
0: बहुत जल्दी, बिल्कुल। तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के एकदम बाद तो पहले बंद ही करते हैं सारी दवाइयां और फिर टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करा के देखते हैं कि अब उसको इसकी जरूरत है कि नहीं है। काफी मरीजों में दवाई बंद हो जाती है, मोस्टली पेशेंट्स में अगर बंद नहीं भी होती है तो रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है।

0: दैट इज फॉर श्योर.
1: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गीत सुनेंगे, और ये गीत डॉक्टर मुकुंद की पसंद का है, तो हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और अभी बहुत सारी बातें पूछना बाकी हैं. आप भी कनेक्ट हुई है हमारे साथ फोन लाइन पर और व्हाट्सएप के जरिए.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है बैरियट्रिक सर्जरी पर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार टू रिस्पेक्टेड आरजे रेडियो डॉक्टर एंड ऑल टीम ऑफ एफएम रेनबो, नाइस टॉपिक, गुड वॉइस एंड सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और ये एक मैसेज आया है, लिखा है परिधि ने दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, थैंक यू।

0: इनका एक क्वेश्चन है कि हाउ इज लिपोसक्शन डिफरेंट देन बेरियटिक सर्जरी एंड डू बेरियटिक सर्जरी लीव लाइफ लॉन्ग सर्जरी मार्क्स और इज इट मिनिमल इन्वेसिव. ये दो चीजें पूछी हैं.
1: परिधि, मैं आपने अच्छा सवाल किया है क्योंकि ये बहुत सारे जो पब्लिक है उनके दिमाग में रहता है कि ये किस तरीके की सर्जरी है बेरियटिक सर्जरी और ये लाइपोसक्शन से कैसे डिफरेंट है. तो लाइपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम वजन की वजह से जहाँ जहाँ शरीर में हमारी चर्बी, तो चर्बी जैसे डॉक्टर निखिल ने पहले भी बताया कि चर्बी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो हमारे शरीर में बाहर चमड़ी के नीचे है जिसको हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, है ना, एक हमारा विसरल फैट है जैसे हमारा ट्रंक में जो इकट्ठा है वो खाली पेट में बाहर भी इकट्ठा है और पेट के अंदर जो विसरा हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें और उसके आसपास भी इकट्ठा है. तो ये जो लाइपोसक्शन है ये हम जो पेरिफेरल फैट है स्पेशली जैसे थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया, एब्डोमन में हो गया, बैक में हो गया, वेस्ट में हो गया, कहीं हिप्स में हो गया, वहां से हम सिर्फ चर्बी की जो सेल्स होती हैं उनको सक्शन करके निकाल लेते हैं, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं. तो ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है. और जो हम बेरियट्रिक सर्जरी है जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अब मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये सिर्फ वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वेट से एसोसिएटेड बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करती है. तो ये ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट ओनली पेरिफेरल बट विसरल फैट भी कम करती है जिसकी वजह से हमारी बीमारियों की जो जड़ है.
0: हम इसको ऐसा समझें कि वो सिर्फ लुक्स पे इफेक्ट डालेगी और ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और इन्होंने ये जो पूछा है कि क्या बैरियटिक सर्जरी में क्या सर्जरी मार्क्स रह जाते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको रोबोटिक या आप जैसे बता रहे थे कि आजकल मिनिमम इन्वेसिव तरीके से किया जाता है तो वो मार्क्स नहीं रहते हैं.
2: जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात करी थी कि बेरियाट्रिक सर्जरी 99.9% या 100% लैप्रोस्कोपिकली ही होती है या रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, और ये दोनों ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, 10 mm, 5 mm, आप मानिए 1 cm के और 0.5 cm के कट होते हैं जो ना के बराबर दिखाई देते हैं. यही इसकी एडवांटेज है. और इन छोटे छोटे कट से हम पोर्ट्स डालते हैं और उससे ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट से पतले पतले वो अंदर जाते हैं और उसके थ्रू सारा ऑपरेशन किया जाता है. इस सब का फायदा ये है कि मरीज की पोस्ट ऑप में रिकवरी बहुत फास्ट है, दर्द का एहसास बहुत कम होता है मरीज को, वो बहुत जल्दी खड़ा होकर चलना फिरना अपने सारे कामकाज कर सकता है, और लुक्स वाइज भी क्योंकि ये स्कार ना के बराबर दिखाई देते हैं, तो ये सब इस कप की एडवांटेज है बजाय की ओपन सर्जरी की.
1: तो मैं इसमें एक कमेंट ऐड करूंगा. जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि हम ये सुनते थे जब हम मेडिकल स्कूल में थे कि बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजंस, तो हमारे बड़े बड़े जो सर्जन्स थे कि ये बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, बड़े चीरे लगाते हैं. वो सर्जन्स का पर्सपेक्टिव था. अब अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो ये जो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसी की वजह से लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का इजाद हुआ है कि हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि सर्जन की कंफर्ट नहीं है, पेशेंट की कंफर्ट है. जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि अब वो मरीज जो है वो 4-6 घंटे बाद अपने पैरों पे खड़े होकर चल सकता है. जिस मरीज की सर्जरी 4 घंटे पहले, सर्जरी तो बड़ी है बट मरीज के लिए वो छोटी है क्योंकि उसकी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हुई है.
0: जी जी, इसके फायदे हैं. और देखिए एक मैसेज और आया है हमारे पास. इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून प्रकाश फ्रॉम दिल्ली. इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है उसका वेट 150 kg है और 30 years उसकी एज है. वो सब कुछ करता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, पर उसका वेट कम नहीं हो रहा है. तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कुछ और सर्जरी करा के, अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? तो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या इसके? कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सर?
2: देखिए, जैसे इन्होंने बताया अपने बेटे के वजन के बारे में, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट नहीं बताई है तो हम BMI तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि 150 kg तो बहुत ज्यादा है और हर लिहाज से इसका बच्चे का जो BMI है वो 45 से ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से. और जैसा बताया कि वो खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन तब भी इच्छा मुताबिक वो वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहा है. तो जितना इस हिस्ट्री से जो पता लग रहा है कि यस, वेट लॉस सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी जरूर इसकी मदद करेगी, पहली बात. दूसरी बात, इन्होंने साइड इफेक्ट्स की बात करी, तो देखिए साइड इफेक्ट में कहूंगा किसी भी दवाई के या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन या दवाई नहीं है जिसके साथ साइड इफेक्ट ना हो. लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, किसी भी ऑपरेशन से पहले, इवन मेटाबॉलिक सर्जरी से पहले भी हम सब तरह की सावधानियां बरतते हैं. इस तरह के मरीजों का बहुत ज्यादा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी इनके पूरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इनके हार्ट का, लंग का, शुगर स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सब

0: चीज़ें ऑपरेशन के पहले चेक की जाती हैं, सारी सावधानियां बरती जाती हैं, जिससे कि ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहें। इसीलिए इन मरीजों को बहुत जल्दी हम, जैसे बात की थी, खड़ा कर देते हैं 4-6 घंटे में ही, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो कुछ मरीजों को निमोनिया हो जाता है लंबे समय तक लेटे रहने से, या खून के क्लॉट जम जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही इन सब मरीजों को जल्दी खड़ा किया जाता है, जल्दी खाना पीना शुरू किया जाता है। आज की डेट में मैं कहूंगा ये सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी और ऑपरेशन से, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो और चाहे वो मेटाबॉलिक सर्जरी हो, इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है।
1: यहाँ पर हम अपने एक श्रोता को फोन लाइन पर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बताइए।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज 44 इयर्स है, 44 साल सर। और मेरा मतलब वजन पीछे था अभी कुछ दिन पहले 102 किलोग्राम था सर, और हाइट है मेरी 5'10" या 11". तो सर मेरा पेट बहुत निकलो है और मेरे भाई का भी पेट बहुत निकलो है, जबकि खाने का तो 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती सही हिसाब से हमें। तो अब इस बड़े हुए पेट को कैसे कम किया जाए सर, प्लीज ये बताइए।
1: वेट को कैसे कम करें, इन्होंने बताया 102 किलो इनका।
3: देखिए जैसे आपने बताया तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट 5'10" या 11" है, इसका मतलब है 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट नाप लें, तो एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हम आइडियल वेट कितना माने, तो उसमें से अगर हम 100 घटा दें, जो हमारी हाइट है उसमें से अगर हम 100 घटा देते हैं तो हमारी जो हाइट है उसके लिए जो हमारा वेट है उसकी अपर लिमिट आ जाती है। तो अगर 175 आपकी माने तो आपका 75 किलो वजन होना चाहिए, यानी आप 25 से 30 किलो अपने वजन से ऊपर हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI जो है वो Grade 2 लेवल ओबेसिटी में आएगा, तो Grade 3 ओबेसिटी जहां आपको किसी तरीके की सर्जिकल हेल्प चाहिए, आप उस कैटेगरी में अभी नहीं फॉल करते हैं ऐसा लगता है। जब तक हम पूरे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट, बट अगर आप Class 2 ओबेसिटी में हैं तो ये आपके लिए अभी आँख खुलनी चाहिए, है ना, कि जब आँख खुली तब सवेरा है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो कब Class 3 ओबेसिटी में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम। तो आपको एक एडवाइस लेना चाहिए, या तो फिजिशियन से लेना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ इसमें बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर निखिल ने बोला ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नींद की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जोड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारियां, तो इन सब बीमारियों के साथ अगर आप वजन ज़्यादा लेके चल रहे हैं तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि नहीं, आपको एक सर्जिकल एडवाइस भी लेना चाहिए, तो आपको एक जो बेरियाट्रिक सर्जन्स होते हैं, मेटाबॉलिक सर्जन्स होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, वो आपकी मदद कर पाएंगे कि किस तरीके से, क्या तरीका आपके लिए बेहतर है आपको वजन कम करने का।
1: जी, जोया हमें लिख रही हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं, और ये लिख रही हैं कि क्या मैदा, जैसे हमें पता है, इन्होंने लिखा है मैदा इज वेरी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड स्टमक, बट वी ईट आउटसाइड फूड एंड इन मोस्ट ऑफ द फूड मैदा एंड सारडो इज यूज्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर हेल्थ एंड कैन वी गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी।
0: देखिए, एक तो जोया जी ने अपना वेट और हाइट मेंशन नहीं करी है, तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे,
1: इन्फॉर्मेशन ही चाहिए उनको।
0: अच्छा, जो बात करी इन्होंने मैदा किया इस तरह की, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि खाना जितना प्रोसेस्ड हम जितना करते हैं, यानी कि वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर सिंथेटिक, उसमें नेचुरल कम हो रहा है और सिंथेटिक वो ज्यादा होता जा रहा है, तो उतना ही खराब होता जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जा रहा है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैदा को जो है सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो जब जोया जी को ये सारी बातें पता भी हैं तो ज़रूर इनको अपने खाने पीने में मैदा की मात्रा कम रखनी चाहिए, और आटा का मात्रा है जो हम, जिसको हम नेचुरल खाना अपना कहते हैं, वो लें, और एक्सरसाइज, योगा, किसी भी फॉर्म में जो है वो इनको अपना वेट मेंटेन करने में मदद करेगा।
1: जी, क्योंकि हम कार्यक्रम ओबेसिटी पे कर रहे हैं तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान पान में क्या सही है क्या गलत, और ये हमें लिखकर भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने लिखा, शालिनी मैम, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर खेतान को गुड आफ्टरनून। मैम, मोटापे की बात कर रहे हैं, पहले का खान पान और आज के खान पान, उसका जो फर्क हुआ है उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है क्या, तो हम इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी। वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, क्या खान पान मेजर रोल प्ले कर रहा है
3: इसमें? खान पान और हमारा लाइफस्टाइल दोनों चीज ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खान पान जो पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खान पान पहले हमारा नेचुरल खाना ज्यादा था, है ना, अभी हमारा जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी है। पहले हमारे खान पान के लिए हमें जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फूड के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे खाना मंगा लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी एक्सेस ऑफ फूड हो गई, तो एबंडेंस ऑफ फूड भी हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फूड भी हो गया, और

0: प्रोसेस्ड फूड भी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फूड की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वजन में। जैसे पहले के जमाने में हम ये मैदा, सूजी, ये सब चीजें कम होती थी, आटा, चावल, ये खाना, सब्जी, तीन तरीके की सब्जियां, रोटी, चावल, हमारी प्लेट रेनबो जैसी कलरफुल दिखती थी।
1: जी जी
0: अब हमारी प्लेट जो है वो सिंगल कलर की होती है। तो अगर रेनबो जैसी प्लेट दिखेगी हमारी, तो वो न्यूट्रिशियस खाना है। अगर हमारे खाने में एक या दो कलर की चीज़ें दिख रही हैं, वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे वाइट्स जो होते हैं ना, हमें वाइट्स जो भी खाने में चीज़ें, सूजी, मैटा, आदा, चावल, या हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारे ठीक है, हेल्थ के लिए एवरेज चीज़ें हैं, बट वो न्यूट्रिशंस नहीं है इतने। तो न्यूट्रिशियस चीज़ें जितनी कलरफुल होंगी, उतनी न्यूट्रिशन, सबकी अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशियस वैल्यू है। अगर हम वो कलर्ड फूड खा रहे हैं तो, अगर हम वाइट फूड खा रहे हैं, तो उनकी सबकी मोर और लेस कॉमन न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर और कुछ बातें हैं आपसे इससे संबंधित पूछने की। हेलो
2: हेलो,
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बताएं।
2: नमस्कार जी,
1: जी नमस्कार,
2: मेरा नाम अमन कुमार है सर। मैं गाँव कुकनी चाची हिंदी जिला से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताएं क्या पूछना है आपको।
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटापे कम करने के लिए कौन सा योगा या प्राणायाम सबसे लाभदायक है।
1: देखिए, आज हम योगा या प्राणायाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, ये भी वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप इसको नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं, एक्सरसाइज को या योग को। पर यहाँ पर हम बात आज बैरियाटिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और ये सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे अब वेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या जब ये सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कुछ लोग इस तरह की थिंकिंग से आते हैं कि वेट लॉस हो गया, अब तो सर्जरी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: देखिए, ज़रूर, जैसा हम पिछले आधे एक घंटे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वज़न कम करने के लिए जो मुख्य हमारा फोकस होना चाहिए, वो तो खाने पीने की आदतों पर और एक्सरसाइज पे ही होना चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी हम उसी मरीज़ को ऑफर कर रहे हैं जो ये सब ट्राई करके भी एडिक्वेट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा, और साथ में वो मोटापे की वजह से और बहुत बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस सर्जरी से हम उसका वज़न एक बार आइडियल कैटेगरी में ले आते हैं, जितना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन अब उसको मेंटेन करने के
1: तो
3: लिए वही
1: उसमें
3: दो चीज़ें जिसकी हमने शुरू में बात करी थी,
1: जी
3: यानी कि खाने पीने की आदत और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो करनी ही करनी है।
1: जी
3: अगर कोई भी मरीज सोचे कि सर्जरी शॉर्टकट है, कि मैं खाने पीने में परहेज नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर
1: जी
3: सकता, मैं सर्जरी करा लेता हूँ और बाकी मैं ऐसे ही करता रहूंगा, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नहीं, मरीज का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूँ मैं, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज,
1: यानी ये सर्जरी एक बार हो गई,
3: सर्जरी
1: अगर
3: उनका
1: आपने
3: रिप्लेसमेंट नहीं है।
1: फॉलो नहीं किया तो
3: बिल्कुल
1: आप वापस वेट गेन कर सकते
3: बिल्कुल
1: हैं।
3: बिल्कुल इनफैक्ट
1: ये
3: वेट रीगेन जो होता है ऑपरेशन के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, वो मुख्य इन्हीं वजहों से होता है कि मरीज मोटिवेटेड नहीं होता, खाने पीने की आदत में बदलाव नहीं कर पाता, एक्सरसाइज व्यायाम का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, और यही मरीज जो है वो वेट रीगेन लेकर आते हैं।
1: तो डॉक्टर मुकुंद, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि फॉलो अप का क्या महत्व है, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा से वेट गेन हो सकता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें डॉक्टर से इन टच रहना पड़ता
0: देखिए,
1: है?
0: जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कुछ डेफिनेटली डाइट प्लान होता है हमारा, और उस डाइट प्लान और आपकी आगे की जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप और मैं मिलकर, आपकी या मेरी एक्सपेक्टेशन अलग नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी खरी उतरे उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद हम 7 से 10 दिन के अंदर मरीज को पहले फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, देखने के लिए कि उनकी हेल्थ, सेहत सही है कि नहीं। उस वक्त हमारा टारगेट वेट लॉस नहीं होता कि कितना वेट हुआ, फिर हम पहले महीने पर बुलाते हैं, फिर पहले 1 साल हम उसको 3-3 महीने के अंतराल पर बुलाते हैं। कुछ जांचें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, तो उन बीमारियों से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि आप में कोई न्यूट्रिशनल की कमी तो नहीं हो रही या प्रोटीन्स की कमी तो नहीं हो रही, उनके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, और एक फिजिकल चेकअप होता है, और साथ में आपका कॉम्प्लायंस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट कॉम्प्लायंस जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज या सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले गए। आपको वेट लॉस तो मिलेगा, बट डिजायरेबल नहीं मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना भी नहीं मिलेगा, और वो सस्टेन भी नहीं रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारा वेट लॉस मेंटेनेंस था वो भी हमारा हो सकता है पूरा ना रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले 5 साल हमें एनिवर्सरी जैसे मनानी चाहिए पेशेंट को फर्स्ट ईयर के बाद, कि एटलीस्ट

0: साल में एक बार जो अपने डॉक्टर हैं उनको हम कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और समझें कि हमारी जो जर्नी है वो ठीक चल रही है कि नहीं, हम वेट रीगेन की साइड तो नहीं है। कई बार कुछ मरीज हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, वो अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं कि हम चाह रहे थे 40 किलो वजन कम हो, वजन तो 40 किलो कम हो गया बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो गई जिनकी वजह से वो कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो उन सबको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल केयर की जरूरत होती है, तो उनको भी फॉलोअप जरूरी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बेसिक प्रश्न है, अभी तक हमने बात नहीं की है, कि आपके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे रैंडमली कि मुझे इतना कम करना है या उतना कम करना है, एक्चुअली कितना कम किया जाता है, इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या?
2: ये देखा जाता है, इसके लिए जो टर्म है वो है एक्सेसिव वेट, या कितना वेट उसका ज्यादा है उसके
1: अच्छा
2: आइडल वेट से। और फिर हम टारगेट करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हम चाह रहे हैं, उसका हम कहते हैं अगर 75% ऑफ द एक्सेसिव वेट अगर वो पेशेंट लूज कर ले तो कहते हैं कि उसने एडिक्वेट वेट लॉस अचीव कर लिया है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर कितना वो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, पेशेंट को 20 किलो लूज करना है या 40 किलो करना है या 50 किलो करना है, वो डिसाइड करता है हम कौन सी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। जैसा बाईपास सर्जरी की हम बात कर रहे थे, अगर मरीज को जितना ज़्यादा वेट लूज करना है तो उसका बाईपास उतना ही हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे हम टीम की बात कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट के साथ बैठकर बात की जाती है कि आपका वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, और है ये इतना, इतना वेट हम लूज करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमने काफी सारी बात की है बैरियाटिक सर्जरी प्रोस एंड कॉन्स पर। अभी भी बहुत सारी बातें मन में हैं, क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर मुकुंद, कि अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी आपने कहा है कि खतरा रहता है कि वेट रीगेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है?
1: देखिए, जैसे हमने कहा तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वेट रीगेन का कारण क्या है। तो ये एक दो पहिए की साइकिल है। हमारा जो सर्जरी हमने कर दी वो एक पहिया है कि वो ऑपरेशन हो गया और आपको एक डिज़ायरेबल वेट, यानी जो हमें एक वेट चाहिए था, एक्सेस वेट का जो एक परसेंटेज वेट लॉस है वो हमें मिल गया। अब हमें दूसरा पहिया अपना चलाना है। तो साइकिल का जब दूसरा पहिया चलेगा, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये एक इजी वे आउट नहीं है कि हम कहें कि मैंने सर्जरी करा ली और मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वेट मेंटेन होता रहेगा और मैं कुछ भी खाता पीता रहूं। तो आपके अपने लाइफस्टाइल को, थोड़ा एक दैनिक दिनचर्या को, चाहे वो खान पीन का हो चाहे हमारी एक्सरसाइज का हो, बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तो उसके लिए ही जो फॉलोअप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रेगुलर फॉलोअप में होते हैं तो हम उसके कारण को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप किसी कारणवश आप अब रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहे और आप 5 साल बाद अब आप देखते हो कि आपका 50 किलो वजन की कम हुआ था और अब 25-30 किलो वजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यू अगेन हैव टू गो टू दी कंसर्न सर्जन जिससे आपने ऑपरेट कराया है। और वो आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वेट रीगेन के बाद भी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होती है। आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा मेडिसिंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। तो जैसे हमने पहले भी शुरुआत में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर के भी हम ये वेट लॉस को दोबारा अटेन कर सकते हैं।
0: जी जी, लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आपने बताया, रीजन खान पान बताया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ओवरवेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर निखिल ये बताइए कि क्या सिर्फ खान पान लाइफस्टाइल ही इसके लिए दोषी हम माने, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आजकल स्टडीज में ये देखा गया है कि काफ़ी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब इवन 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। इसमें एक वजह ये ज़रूर है, जैसी बात की थी हमने खाने पीने के बारे में, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ये सब इसका भी मात्रा इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली में ही, पिता भी, दादा भी और बेटा बेटी भी, सबके सब इससे ग्रसित हैं।
0: जी बिल्कुल। तो अब इतना ही समय है कि मैं अपने धन्यवाद दूं अपने आज के गेस्ट को, और आपको बता दूं कि आज हमने ढेर सारी बातें की बैरियाटिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ रहे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एसोसिएट डीन, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक्सेस बैरियाटिक सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहां आए, समय निकालकर इस विषय पर ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आओ बालो बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गाँव वालो अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मकसम सुनते रहिए 102.7 एफएम।

प्रोग्राम लव यू जिंदगी दी शुरुआत हो चुकी है। शाम दे वज गए ने छे ते तुहाडी आ जे दोस्त सुरभी आ गई है जी लैके ओ प्रोग्राम जो बहुत खास है। ये प्रोग्राम पॉजिटिविटी ना भरिया होया, इंस्पिरेशन ना भरिया होया, नैगेटिविटी नू दूर करन दे लई इस प्रोग्राम नू खास तुहाडे लई पेश कीता जांदा है। सो इसी प्रोग्राम विच एक बड़ी खास गल मैनू याद आई अज, वह गल है वैल्यू की। अक्सर असी शिकायत करते हैं जिंदगी विच कीमत दी, यानी कि साड़ी कीमत दी, कि किसी की जिंदगी में साड़ी कीमत की है। आप ये चीज़ बहुत सोचते हैं और सब तो ज़्यादा फिर आप हर्ट उदो होंगे जो तो सानू ये पता चलता है कि जिस इंसान के नाल असी जुड़े हुए हैं, जिस इंसान आप अपनी जिंदगी समझते हैं, उन्हें बड़ा खास हिस्सा समझते हैं, उसकी जिंदगी के साड़ा कोई खास हिस्सा है ही नहीं है। ये सब चीज़ा दुख दिंदियां ने, बट इतने असी डीमोटिवेट नहीं होना, इतने असी मोटिवेट होना है। क्योंकि कई बार कुछ लोग सानू ये दस देंगे ने कि हैसियत जिहड़ी ना साड़ी जिंदगी विच साड़ी सब तो ज़्यादा होनी चाहिए है, ना कि किसी होर की जिंदगी विच। सो विषय बहुत खास है। यो एहसास है जो सानू ये लगता कि असी किसी की जिंदगी विच हाँ हाँ तो सही हाँ, पर साड़ी अहमियत शायद नहीं है। सो कई बार कुछ रिश्ते अजिहे होंदे हन जिथे असीं हर वेले सामने वाले लई मौजूद रहने हैं, पर जो सानू उन्हां दी लोड़ हुंदी है ना, वह कितें नज़र नहीं आते। दो लाइना इस ते कहना चाहूँगी कि कुछ

वेलकम बैक प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। मैं हाँ जी थोड़ी आर दोस्त सुरभी। वो प्रोग्राम जो तुहानू इंस्पायर करता है तुसी सब जानते हो। बस फिर देर किस गल दी है, थोड़ी दोस्त तुहानू एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिसनों सुन के तुहाडे मन दे विच भी एक बार तो विचार आएगा ना कि यार असी क्यों हार मनी, जी बाई चांस तुसी कदी हार मनी होए तां। सो कहानी है ये पंजाब दे एक नौजवान दे, इन नौजवानों नू प्रेरित करने वाली एक साहब दी कहानी है। पंजाब दा जिला मानसा दे पिंड कोटला दे रहन वाले नौजवान जगदीप सिंह दी मैं गल करन जा रही हाँ। यो नौजवान जिसकी कहानी पूरे देश दे नौजवानों लई एक बेहद ही प्रेरणादायक मिसाल है। कहानी तो पहले ही मैं दस दिंदी हाँ कि यह कहानी ना ये साबित करती है कि जे मन विच कुछ करन दा जज्बा होवे तां वड्डियां मुश्किलां भी तुहाडा राह नहीं रोक सकदियां। कहानी दी मैं शुरुआत करदी हाँ। जगदीप सिंह दी गल करां तो एक बहुत ही साधारण अते गरीब किसान परिवार दे नाल संबंध रखता सी। मतलब उहदे घर दे विच ओह सब सहूलतां नहीं सी जो आम घर दे विच हुंदियां ने। परिवार सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन सी अते कर्जे दा भारी बोझ सीगा। इस भारी बोझ दे विच जगदीप सिंह दे सुपने बहुत वड्डे सी। जगदीप सिंह बहुत कुछ करना चाहुंदा सी पर उहदे घर दे हालात कुछ होर बयान कर रहे सी। घर दे हालात इन्ने ज़्यादा खराब सन कि पढ़ाई दा खर्चा चुकना भी मुश्किल सी, पर जगदीप दा सुपना बहुत वड्डा सी। जे मैं सुपने दी गल करां तां जगदीप दा सुपना सी कि ओह देश दी सब तो वधिया तकनीकी संस्था जिसनू IIT भी कहा जांदा है उस विच पढ़ना चाहुंदा सी, क्योंकि ओह कुछ करना चाहुंदा सी वखरा। पर पैसे नहीं सी, इन्नी वड्डी संस्था दे विच इंस्टीट्यूट दे विच पढ़ना उहनां दे बस दी गल नहीं सी। हुण सवाल इत्थे इह पैदा हुंदा है कि जे उहनां दे कोल कोई समर्थन नहीं सी कि जगदीप अपना सुपना छड्ड दिंदा। बहुत सारे ऐसे हुंदे ने जो यही सब चीज़ां देख के अपने सुपने नूं छड्ड दिंदे, पर जगदीप ने नहीं छड्डिया। उहने कहा कोई गल नहीं, जे घर विच सहूलतां नहीं है तो फिर की होया, मेरे को साधन तो नहीं। इहनूं कहिंदे ने जो एक रस्ता बंद होवे तो दूसरे रस्ते वल चले जाना चाहिए, दूजा ऑप्शन होवे तीजी ऑप्शन। ऑप्शनस बहुत हुंदियां ने, बस चुनना सानूं पैंदा, चूज़ सानूं करना पैंदा असीं उहनूं चुन पाउंदे आ कि नहीं। देखो जगदीप दे पिंड विच ना तो कोई चंगी कोचिंग अकैडमी सी, ना ही महंगीआं किताबां खरीदण दे पैसे सी। जगदीप ने ना हिम्मत नहीं हारी, उहने लई फिर इंटरनैट दी मदद। जी हाँ, ये उही इंटरनैट है जो अज दे समें दे विच बहुत सारे लोकां दा सुपने पूरे भी कर रहा, बहुत सारे लोकां दे लई एक बहुत वधिया साधन बनिया होया है। बस इस नूं इस्तेमाल करन दा तरीका आना चाहिए है। सो जगदीप ने हिम्मत नहीं हारी, उन्हें ना इंटरनेट की मदद ली तो यूट्यूब पर की किया, मुफ्त लैक्चर देखने शुरू करते। दिन रात खुद ही पढ़ाई शुरू कर दी, जिन्हों सैल्फ स्टडी कहने। आप सब जानते हैं कि अजक सोशल मीडिया से यूट्यूब पर मतलब इंटरनेट पर तुम्हें फ्री पढ़ाया जाता है, बस तुम पढ़न वाले होने चाहिए हो। तो उन्हें पढ़न वाले एक जगदीप भी सगा, उन्हें पढ़ना शुरू कर दिता। हुण पढ़दे पढ़दे उन्हें इन्ना ज्ञान हासिल कर लिया सी कि वह पूरी तैयारी विच सीगा। अपनी अंथक मेहनत सदका जगदीप ने देश की सब तो औखी प्रीख्या JEE एडवांस्ड पास की, देश भर विच ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल कर।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर का एरिनबो चैनल है। शाम के 7 बज रहे ने ते पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।

नमस्कार आदाब जुआन अफमान 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी चंद्र दा रेनबो चैनल ट्यून इन की तो है तुसी ते बने हुए अपनी दोस्त आरजे नेहा रला दे नाल ते मैं जी चेहरे ते मिठी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवें हाथ जोड़ सारे ही स्रोतियां दा इस्तकबाल करते हाँ अज दे इस शाम इस फिल्मी महफिल दे विच फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच अज तुहानू फटाफट वेरवा दे दिंदे आ कि केड़े केड़े खास

टाइम बनाया। प्रोग्राम फिल्मी दुनिया विच गलबात कर रहे हां विजय शांति दी, जिन्होंने अनिल कपूर दे नाल फिल्म ईश्वर दे राही हिंदी सिनेमा दे विच ते डेब्यू कर लिया सी। इस तो बाद उन्हां दी फिल्म आई मुकद्दर का बादशाह। ये फिल्म भी उन्हां दी ही फिल्म दा रीमेक सी। फिल्म दा नाम सी अस्वदमा। उस तो बाद 1997 दे विच गुंडागर्दी फिल्म दे विच नजर आई विजय शांति, ते इस विच उन्हां दा साथ दिता स्क्रीन ते धर्मेंद्र ने। एक एक्शन पैक्ड फिल्म सी। इस तो बाद जमानत ते तेजस्विनी वर्गियां फिल्मां दे विच दमदार अदायगी नाल नजर आई विजय शांति। अक्सर हिंदी सिनेमा की जेकर असी गल करते हाँ, हिंदी सिनेमा दे विच जेकर असी पुरानियां फिल्मां देखिए तो ज़्यादातर फिल्मां दे विच फीमेल कैरेक्टर

अबे मैं मॉन्टो वेंट सावन मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जुलंद तर रेनबो चैनल ट्यूनिंग की तो है तो सीधे सुन रहे हो प्रोग्राम फिल्मी दुनिया ते मैगे जी गीत सुने सुनंद किरकिरे दी आवाज विच प्यारा जिहा मिठा जिहा आला बर्फी ते गल करिए हुन प्रोग्राम उस मोड़ ते आ चुका है जिते गल्लां ते बहुत सारियां तुहाड़े नाल करनी है, बहुत सारियां बॉलीवुड दियां गॉसिप्स भी है, पर मैनूं हुन सोचना पैना है कि किहड़ी गल पहलां तुहाड़े नाल करनी चाहिए। रीजन बीइंग प्रोग्राम दे विच थोड़ा समा ही हुन बाकी है ते मैं कहा जी प्रोग्राम दा जिहड़ा सिलसिला है अगे वधाउने हां। गल करदे हां हाल ही दे विच म्यूजिक डे ते एक गीत रिलीज़ हुंदा है जिस विच जमील जमाली नोरा फतेह दे नाल फिर दोबारा नज़र आंदे ने ते सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा ही वायरल हो रहे हैं गीत। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर विच अपने अंदाज ने लोगों के दिल विच दोबारा एक बार फिर जगह बनाई। एक्टर राकेश बेदी लगातार चर्चा विच बने हुए हैं। इस फिल्म तो बाद उन्होंने जी है लोकप्रियता है, लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा एक बार फिर जड़ा है उन्होंने तवज्जो देने लग पे, बहुत ज़्यादा पसंद कर लग पे ते मीडिया तो लेके सोशल मीडिया तक हर जगह राकेश बेदी का ही नाम सुनने देखने मिल रहा। तो हाल ही दे विच उन्हां दा एक गीत या बाबा रिलीज़ होया जिस विच डांसर ते एक्ट्रेस नोरा फतेह जिहड़ी है नज़र आई। इस गीत दे विच नोरा फतेह ने जिहड़े है इस गीत दे बोल अपनी आवाज़ दित्ती है बोल नूं ते इस फिल्म दे विच दोवें नज़र आ रहे है ते दोनों की इस प्रेजेंस नूं बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस दे नाल ही नाल तुहानूं दस्सदे चलिए कि राकेश बेदी की जेकर गल हो रही तो धुरंधर टू दे विच उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की जिस विच उन्होंने कॉमिक अंदाज जिहड़ा है

देख देगी वैसी। सोचो सोचो, होर भी हैरानी वाली गल दसा कि भारत विच एक अजिहा मंदिर है जिथे पत्थर दे बने पहिए अज भी समा दसन लई मशहूर ने। मतलब इत्थे लोग घड़ी नहीं देखते, फोन नहीं देखते, तो ना ही अपनियां लगाईयां होईयां गुटकड़ियां देखते है। लोग पत्थरां दे जरिए, सूरज की रोशनी के जरिए समय बारे जानते हैं। जी हाँ, गल कर रहे हाँ ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूरज मंदिर की। लगभग 1250 ईस्वी विच रंगवंश के राजा नरसिंह देव पहले वालों बनवाया गया। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, सगो प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान ते कला का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, यह वो समा है, वह सदी की गल कर रही हाँ जदों टेक्नोलॉजी नहीं सी, जदों AI नहीं सी, ते अजकल दे एडवांस फैसिलिटी नहीं सी, पर फिर भी साडे जिहड़े प्राचीन भारत दे लोग सीगे ओ इन्ने माहर सीगे, इन्ने ज्ञानवर्धक सीगे कि उन्होंने मंदिर बनाया। ते कोणार्क शब्द की गल करिए तो कोणार्क शब्द का अर्थ है सूरज का कोना, अते शायद इसलिए पूरा मंदिर जिहड़ा है दोस्तों सूरज दे एक विशाल रथ वांग बनाया गया है। इस रथ नूं खिंचदे हुए 7 शक्तिशाली घोड़े अते इस दे नाल 24 विशाल पत्थर दे पहिए बनाए गए ने, पर असल कमाल तां इन्हां पहियां विच लुकिया है। दोस्तों, ये पहिए सिर्फ शिंगार लई नहीं बनाए गए। मन्निया जांदा है कि इन्हां उत्ते पैंदे सूरज दे साए नूं देख के समय दा बहुत सटीक अंदाजा लगाया जांदा है। सोचो, जिस काम लई अज असीं स्मार्टफोन यूज करदे हां, घड़ियां देखदे हां, पहला पत्थरां दे नाल ओह काम कीता जांदा सी। मतलब कुदरत नूं जेकर जानना है तो कुदरत दे विच ही जुड़ना पैना है, कुदरत दे नाल ही जुड़ना पैना है, मिलना पैना है, कुदरत नूं समझना पैना है। इन्ना ही नहीं, कहा जाता है कि मंदिर की मूल प्रतिमा जिहड़ी है इस तरह स्थापित की गई है कि सूरज दीआं पहलियां किरणां जिहड़ियां है ओह सिद्धियां उस ते पैंदियां ने। इह उस युग दे, उस दौर दे विज्ञानिक ज्ञान ते निर्माण कौशल दी शानदार बेमिसाल है। दोस्तों, इस अद्भुत विरासत दी जिहड़ी अज गल कर रहे हां असीं कोणार्क सूरज मंदिर दी, इह 1984 दे सन विच यूनैसको ने इस नूं विश्व धरोहर स्थल दा दर्जा भी दित्ता है, यानी वर्ल्ड हैरीटेज साइट दी जद असीं गल करदे हां ते उस विच नाम आंदा है ओडिशा दे इस मंदिर दा। जेकर असीं मंदिर गुरुद्वारे नूं सिर्फ धर्म दे नाल नाल ना देखिए, इस नूं इंसानियत, इस नूं ज्ञान, इस नूं कुदरत दे नाल जुड़न दा एक माध्यम समझिए, ते दुनिया दे विच बहुत सारियां चीज़ां हैं जिहड़े असीं सवाल लभदे हां ओह अपने आप मिल जाणगे। ते दोस्तों, कोणार्क दा सूरज मंदिर सानूं इह सिखांदा है साडे पुरखे जिहड़े ने, साडे जिहड़े सियाणे सीगे, ओह सिर्फ कलाकार नहीं सीगे, ओह सिर्फ सियाणे नहीं सीगे, ओह हर एक खेत्र दे विच जिहड़े उहनां नूं जानकारी सी। ते इस मंदिर बारे तुहानूं किहो जिहा लगा, इस बारे पहलां पता सी जां नहीं, सानूं दस सकदे हो, मैसेज कर सकदे हो, क्योंकि बहुत जल्द कुछ ही पलों के इंतजार तो बाद पेश करांगी प्रोग्राम दिल चाहता है, तो उस विच जान के खुशी होएगी कि तुहानू ये जानकारी जिहड़ी अज दी किहो जिही लगी।

मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, आवार जी एनु एफएमएंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन कीता होया तुसी ते मैं के जी चेहरे ते मिठी जी मुस्कान, दिल विच जोश प्यार ते दोवें हाथ जोड़ हाजिर तुहाड़ी दोस्त आरजे नेहा रलहन एक बार फिर लैके प्रोग्राम दिल चाहता है।

किसी को अलविदा कहने की साथ किस कदर तकलीफ देती है, बहुत रंजूर करती है कि जैसे चौदहवीं का चांद बादल ओढ़ ले यकदम, कि जैसे सर्दियों की दोपहर में शाम हो जाए। दोस्तों, प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे हो अपने दोस्त आरजे नेहा लहंदना। ते प्रोग्राम दे विच हुण कुछ आखिरी फरमाइशां जो साढ़े तक पहुँचियां हैं, जाते जाते उन्होंने भी नाम प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करना चाहूँगी। तो गुड ईवनिंग लिख के भेजी है जी, तमाम उम्र कर लेंगे तेरा इंतज़ार, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी बहुत कम है। तो मैसेज भेजे जी सतपाल वर्मा गिदड़बाहा पंजाब तो।

आशुवाणी जलंधरदा रेनबो चैनल ट्यून इन किया है तो बने हुए अपनी दोस्त आर जे निहार अलहंदे नाल अपने इस दोस्त वालों प्यार भरी नमस्कार आदाब कबूल फरमाओ।

जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और।

उसको जाते हुए रोका नहीं, इस बात का मलाल तो रहा मगर रोकता कैसे। उसके उसको जाते हुए देख

कि मन में बिखरने का डर था कि बिखर जाएंगे तो समेटेगा कौन। इस पर परवीन शाकिर क्या खूब लिखती हैं, अक्स एक खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई।

रफ्तार रफ्तार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रफ्तार रफ्तार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा।

मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, जिस काफिर पे दम निकले।

हजारों काम मोहब्बत में है, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग। जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, वो कमाल करते हैं।

0: सारा जग बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला।
1: कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, वो ना आए तो सताती है खलीश सी दिल को, वो जो आए तो खलीश और जवां हो।

0: वो मेरे दिल के, वो मेरे दिल के तलबगार नजर आते हैं, शदमानी के बासार नजर आते हैं, जो मेरे नाम से बेजार नजर आते थे, अब वही दिल के तलबगार नजर आते हैं।
1: आई आई आई आई आई आई।